नाचलो यो कृषके पमनामक नमो श्यावते यन्हकमो ओ विन मक्तवन लव येते हय हय हय हय हय हय हय हय हय Happy May, Happy May, Yen Hakamo, Eka Taham, Eka Kwam, Eka Nam, Eka Mahmak Ayalam, Tewate, Obi Hitam, Yef Nara Vaskatik, Yesio, Ne.

ष्टेयाता तवा छोता सोवाने हके विनष्टेयाता न एता सोवाने आ याय आ याय हे मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक